गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी दा आनंद मानिया है। असी आप जी दा ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करदे हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चियां नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो तां आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है तां अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असी तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है तां ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो ही एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा यह मेरा ही रूप है। पर जदों यह भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग गया।

चार कुरैता छड़ देन ते पांच ककारा विच पक्के हो जान रैत रखन वंड के छकन।

0: DM Music पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई
1: गुरु रामदास राखो सरनाई
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रसपिनी।

अगर किसी ने सोलह सिंगार किते हों, अगर कोई अमीर भी बहुत होवे और सिंगार भी सारे किते हों, ते जे उदी नक ना होवे ते ओ चंगा नहीं लगता। प्रणवत नाम देव नाके बिना नासो है पति सुलखण। बेशक सारे सिंगार कीते ने पर जे नक नहीं ते इंसान चंगा नहीं लगता। इसे वास्ते भगत जी ने कहा, तेरे कोल सारे सुख ने, माया भी बहुत है, रहने वास्ते घर भी है, दुनिया का हर सुख है, पर जे तेरे को परमेश्वर का नाम नहीं ते समझ जिस तरह नक तू

पत्र लिख के क्या सेठ जी ए लो तुलसी का पत्ता कुत्ते राम लिखे है। तकड़ी एक पासे तुलसी का पत्ता रख दो जिदे ते राम लिखे है, तकड़ी के दूसरे पासे सोना पा दो। जिन्ना सोना इस पत्ते के बराबर होगा

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसया, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पिया तुलसीदास जी दे उते राम लिखे, ते सेठ ने हसदिया होया।

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर

शिवजी भगवान ने जदू अर्जुन दे नाल युद्ध किया ता छोटे दे रूप विच भज के उस जगह आए अर्जुन तू हार के और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप विच जिसनु हिंदी विच सांड कहंदे ने ओदे रूप विच भजे आए ते ओ जड़ा पहाड़ सी

कोई दान करे। कोट जो तीर्थ करे तन जो ही वाले गारे। कोट कहते हैं करोड़ करोड़ा कोई तीर्थां से जावे तन जो ही वाले गारे। तन के शरीर में अगर कोई अपने शरीर में

हे वाहिगुरू, हे अकाल पुरख, तू सारिया ते मेर कर, सारी सृष्टि ते मेर कर। तू मालक है, तू प्रतिपालक है, तू राखा है सबे जी समा, तू सारिया ते मेर कर। तू ईरखा द्वेष वैर विरोध जो मना च अग लगी हुई है दूर कर, सारे अनु समत बख्श। जगत सड़ रहे है, अगा लगिया हुई ने, तू कृपा कर। तू मालक है सारिया ते कृपा कर। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित दुआरे उभरे जिते लेहो ओबा। तू सारिया ते मेर कर, सारे तेरे ने, तू सारिया की कृपा कर। ये अरदास है कि अन्न पानी मुछ उपाए, ये पदार्थ सारिया नू दे, सारिया ते कृपा कर। दुख दलिद्र भन तर, सारिया का दुख दूर कर। दलिद्र ये सब दूर कर, तू सारिया ते मेह कर।

कमाल दिया गल्लां कहीं कमाल दे बचन कहे कथा कीर्तन मन न लावे संत सिख को बुरा अलावे निंदा जुआ हेरे जो माल जो पंक्तियां तुसी सुनिया कई अजकल लाटरियां पाउंदे ने ए भी जुआ है आखिया निंदा जुआ हेरे जो माल महा दुखावे तिस को काल आ देख लो नाल नाल मन नूं तोलियो भाई किथे घट हां किथे पूरे हां पूरे होना है बाबा गुरु गोबिंद सिंह जी दी सोजी नूं धारण करना है। एक होर बड़ी कमाल दी गल कही जी सिख एक होर काम करे

तीन चीजा इको जिया खंड आटा ते घ्यो तीन चीजा इको जिया इनू तिरपावल की दे कहते हैं।

मन च यह भावना बनानी है कि यह प्रसाद मेरे गुरु के दर के उत्ते जाना, यह प्रसाद गुरु के दर ते जाना, यह प्रसाद गुरु की संगतां च वरतना। ते कहंदे जदों बनाउणा जां ते जपजी का पाठ जवानी, जे नहीं आउंदा ते वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। किवें कहिआ?

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र वचन, जो कि बहुत ही अगम्मी रबी विचार है, सानू महाराज जी के शब्द द्वारा सुनने का एक मौका प्राप्त होया। जो आप जी की सेवा च गुरु महाराज जी का महान सिख्या भरिया उपदेश दास ने अर्ज करना है, उसके वास्ते मेरी प्रबंधक सज्जना नूं पहले ही बेनती है कि जो पिछों बच्चों की आवाज आती है उसका सही इंतजाम करन, ताकि उस थॉट प्रोसैस के विच जुड़ी हुई संगत नूं किसी भी किस्म की कोई जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। आप जी ने इस शब्द की जो थीमैटिक लाइन है वो बार बार सुनी है, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात कठिन। सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी महाराज सानू साडे जीवन दे विच्चों कोई अजेही चीज छोड़ देण नू आख रहे हन जो कि सानू सब तो ज्यादा प्यारी है। कोई अजेही चीज छोड़न नू आख रहे हन जो कि साडी जिंदगी दे विच तमाम फिक्कापन लैके आंदी है, दुख लैके आंदी है, सारी जिंदगी दे विच जो जहर घोलदी है उस नूं छोड़न नूं कह रहे हैं। पर जिस वस्तु नूं महाराज जी छोड़न नूं कह रहे हैं उही वस्तु है जो सिख बहुत मुश्किल दे नाल छोड़ सकता है। उही वस्तु जिस चीज नूं महाराज कह रहे हैं ना छोड़ दो, उही साडे लई छोड़नी सब तो ज्यादा कठिन। गुरुदेव जी आप ही इस गल नूं जानदे हन, इस करके वो कहंदे हन, पहला सुजेशन है कि मन की मत त्यागो हर जन, पर नाल ही नाल क्योंकि वो जानदे हन, वो कहंदे हन दिस इज नॉट वेरी ईजी थिंग टू डू, दिस इज नॉट सो सिंपल थिंग टू डू, यह बात कठैनी, ये बात बहुत कठिन है। क्योंकि अगर असी अपने मन की मत ही छड़ दिती तो फिर साढ़े पास रह गया कुछ भी ना रह गया। हरेक इंसान की अपनी मत है,

तो हम तक सीखने हैं अपनी मन भी मत में त्याग दे। अगर अपने आप में सोचते कि सियाने हो तो वो एक गलतफहमी है, फिर महाराज जी क्यों करिए, दसों क्यों करिए। तो कहेंगे गुरु की मत तू ले आने। इंसान सिर्फ गौर न सुनो, इतने शब्द महाराज जी ने वर्त्या है ए आने।

सुखमी साहब जो महाराज जी ने उचारी थी कि सुखमी साहब जो लफज उड़ाने जरा उन्होंने निके जो है न्याणियों जो 5-7 साल की उम्र में सी ये शब्द उन्होंने लिखा थे उन्होंने बेचारे भोले पालन के भी समझ नहीं सी आने ये सियाने फिर न्याणे कौन हैं ये न्याणे वो हैं जिन्होंने पास सियाणक नहीं है पर उन्होंने वहन है सियाणक ये जो ग्रोन न्याणे हैं ना तो उन्होंने आता है ग्रोन न्याणे जो ग्रो हो गए हैं लेकिन हम हाले न्याणे ही अते मनवे भी नहीं हम से ही हाले न्याणे हैं वो तो कोई कोई गुरसिख अजिहा होंदा है जो आखे हम बार तू गुरु पिता है जो मत समझाए तू गुरु पिता है अभी अते अभी बालक हैं हाले लेकिन कौन कौन प्यार है कि अभी बालक हैं जब इंसान कहता मैं भी बच्चा समझ दो मैं भी न्याणा समझ दो मेरे तौले आ गए हम तो मैंने तो भी समझाने की कोशिश कर दो जिस तरह के तौले आगे नाल अकल आती है वह तो कुछ संबंध ही नहीं उसके नाल तो साथ संगत जी हम तक आप जी ने यह सुनिया है गुरु बाबा जी का सुनेहा कि अपनी सारी मत अपनी सारी सियाणत क्योंकि साढ़े पास नहीं है छड़ दो तो कहने हम गुरु की मत को ले आने आने गुरु की मत लै क्योंकि भगत बिना बहुत डूबे सियाने बहुत बड़े बड़े सियाने जोड़े हैं वो गुरु की मत तो बिना भगती नहीं आती बिना भगती तो बहुत व्डे व्डे सियाने जो हैं वो अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं अपनी सियाणप के बीच ही डुब जाते हैं इस करके प्रेम नाल आओ इस पंक्ति लगाओ उपरंत अगे चल देना।

उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वरतनी, तुसी जान तो इनकार कर दियो। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कहने के भाई ए हुक्म ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाहियां।

कबीर साहब कह रहे ने मैं ता गुलाम हां, मैं ता ओदे घर दा नौकर हां, ए हुण ओदी मर्जी है।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक ता निंदका ने पहला कन भरे सन। बादशाह कहंदा कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं किया।

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुगो अटाई।

छुपाई, हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआं ने बड़ी खुशी मनाई, सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने, सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है, जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ा दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ा दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ा चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोन लग पए ने, पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपनी श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

पर ओ जिहड़ा हाथी ओ कबीर साहब नूं लताड़दा नहीं। बड़ी कोशिश कीती पर ओ जिहड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नूं मत्था

0: काजी नू हाले भी समझ नहीं आई। ओ हाथी इना लोका नू एक सवाल करदा है,
1: क्या अपराध संत है कि ना।
0: हाथी कहंदा है इस कबीर दा अपराध की है, इना ही कि ए परमेश्वर दा नाम जपदा है, जेड़ा परमेश्वर दा नाम जपदा है उनू जी

आख्या क्यों महल माड़िया दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज पूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देगा, बस इस तो बाद होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े है, जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कुछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बनते सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखते सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसका शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालियां ने ओ लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार।

क्योंकि इतना खलेरा भी ना खलेर संसार विच के तेरा ध्यान विच ही रवे। तेरी आत्मा ने गुरु नानक दे चरणा विच जा विराजना सी, पर तू पदार्था विच अपना मन रखेगा तो फिर पदार्था विच भाई कोई कीड़ा ही आके बनेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो परै, ऐसी चिंता में जो मरै सरप जून वल वल। इसलिए इतना को इकट्ठा कर जितनी तेरी बिरती ना बिगड़े, तेरा नितनेम दा समा एवें ना चला जावे, क्योंकि कुछ नाल भी लै जाना है तू ते नाल परमेश्वर दा नाम जाना। इसलिए असी 24,000 श्वास रोज दे लैंदे हां, इना विच्चों श्वासा दा दसवंद जो 2.5 घंटे समा बनदा ओ असी गुरु दे लेखे, ए गुरु का कर्ज है साडे सिर ते, ए तां असी उतारना ही उतारना। आख्या जे इस तों वध समा कढेगा तां गुरु नानक दे बैंक विच ए समा तेरा जमा है, जदों मर्जी है भाई ए सहायता तू प्राप्त कर सकना। इसलिए इना श्वासा नू जप जप के भाई सफल करना है। अगे पुछया जाना है कितने को श्वास भाई जप जप के सफल कीते। आ बैंक विचों लोन लईदा है ना, उदा ब्याज देना पैंदा है, ते असी भी श्वासा रूपी लोन लैके आए हां, ते श्वासा दा ब्याज देना ही पेगा। जे नहीं देवांगे तो फिर पकड़े जावांगे। फिर हजूर कहंदे हन आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। क्योंकि मनुख जितनिया भी सियाणपां करदा है संसार विच आके, परमेश्वर दे नाम तो बिना जितनिया भी सियाणपां हन ए अपने गलां विच आप फाई पा लैंदा, फिर दुखी हुंदा। इसलिए हजूर कहंदे हन भाई जेती सियाणप कर्म हो किए तेते बंद परे, आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। अगे करणी कीरत वाचिए बै लेखा कर समझाया, ठाउ न होवी पौंदी हुण सुने कह रवाया, मन अंधे जन्म गवाया। इसलिए भाई इस जन्म नू गुवाना नहीं, जप जप के जन्म नू सफल करना। ए साडी जन्मा दी सुती होई सुरत नू धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जगा रहे हन। ए मनुख तू जाग, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत दियां प्रीतां झूठियां प्रीतां नी। एवें तैनू सारे कहंदे हन भाई कोई अपदा पवे मैं तेरे लई सब कुछ वार देवांगा, पर पता उदों ही लगदा जदों सारे आसरे टुट जांदे हन, इक परमेश्वर दा आसरा रह जांदा है। ते फिर जदों मनुख निम्रता दे नाल सच्चे दिलों अरदास करदा है, परमेश्वर दी प्रीत ए लोक परलोक सवार देंदी है।